0: Myra 101.9 FM Rale Dharam. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स.

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
0: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Stations, Harini Neelakantan, Natasha Sherpa, Sonali Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner, Radio Naira. Your Indian community media network.
0: Prabhudeva live, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
1: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
2: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
1: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

Namaste, I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Trying to Loon Center. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पका देसी पका लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gane, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pata desi, pata local.

0: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए. पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक. चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान. 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान. बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट. 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519. अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454. फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 फॉर द 90 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सेंटर। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919.
1: Hello, Rally. This is Vishal Dalani from Vishal and Shekhar.
2: This is Shekhar Rabjani.
1: Super excited to come to your city
2: for a live concert on the 19th of July 2026 and the Rally Memorial Auditorium.
1: This concert has been organized by RTP Entertainment.
2: So book your tickets right now.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

ये माइंड ब्लोइंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD 449 AM एंड 99.9 FM HD 3 पर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर। वेल माय ट्रायंगल में फोर्थ फ्राइडे इन टाइम सेलिब्रेट होने वाला है। जॉइन अस फॉर द TDA फोर्थ फ्राइडे इन जुलाई एंड गेट रेडी टू डांस एंड टैगिंग ऑन द स्क्वायर। The fabulous Jewels will be performing live at the Plaza. Slip into the rhythm and Carolina Shags, the smooth, easygoing partner dance on right. Here in the South and perfectly match the beach music in good beat. Whether you are a seasoned dancer or just want to try, the square will be filled with the friendly faces, lively tune and plenty of fun. Come out, grab and partner and let the music move to you. Lal kahi jaiyega nahi, sun rahi hai Monica ke saath Radio Naira, pata desi, pata local.

0: आप लिसनर ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM, 99.9 FM LG3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर।
1: हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है। कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई। Can't miss the night under the light, known as Mr. Saturday Night. Party is said to deliver an unforgettable show packed with the chart topping and topping. It is high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है। इसकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो 9 पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. वेल मॉरिसले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है. इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira FM. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूज एंड टॉक्स. विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है. एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई at the Greasy Creek Mineral and Gem Show in Spruce Pine. With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 4090 एएम 99.9 एफएम HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देश

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SG4, 4090 AM एंड 99.9 FM SG3 तेलुगु नायरा फेम। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर।

0: एक नंबर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM,
1: 99.9 होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंग्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to your concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन करिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय। Let's play.

ओ भाई, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव गॉट. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो, प्रोड्यूसर अश्विन वर्डे हैज ब्रोकन हिज साइलेंस आफ्टर परेश रावल क्लेम दैट द स्टोरी ऑफ OMG2 वाज हिज आइडिया एंड दैट ही वाज अनक्रेडिटेड. रिफ्यूटिंग द एलिगेशन, वर्डे सेड द एक्विजिशंस मेड बाय परेश रावल इन अ रीसेंट पॉडकास्ट पर्टेनिंग टू OMG2 आर शॉकिंग, अनट्रू एंड अनसब्सटेंशिएटेड. ही रिवील्ड दैट राइटर डायरेक्टर अमित राय नरेटेड द स्टोरी टू हिम एंड हैड अर्लियर रिटन इट इन द OMG फॉर्मेट आफ्टर परेश's सजेशन, बिलीविंग द IP बिलोंग टू हिम. However, Verde said the rights belong to Akshay Kumar. Verde further alleged he was trying to make a version of OMG under a different name, which is unethical and unprofessional. For me, that is nothing sort of a theft. He added that several actors turned down the script as they felt it was essentially OMG, after which Wakao Films acquired it. According to Verde, the script is solely registered under Amit Rai's name and he eventually took it to Akshay Kumar, leading to OMG 2 being made. Yaar, ye credit wala problem har field mein kaise hai main samajh nahi pati. Everybody is like, mujhe credit नहीं दिया या फिर किसी और का क्रेडिट खा जाना. When it will stop? This is so frustrating. Stay tuned for more. I'll be back only on that.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

दो लोग जब साथ में दिखते हैं तो हमें लगता है क्या, हमें लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है, पर हर वक्त ऐसा नहीं होता. प्लीज, दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. यू नो अर्जुन बिजलानी हैज शट डाउन रूमर्स लिंकिंग हिम टू नागिन को स्टार मौनी रॉय आफ्टर अ वीडियो ऑफ द टू स्टेपिंग आउट टुगेदर स्पार्क्ड स्पेकुलेशन ऑनलाइन. इन अ स्ट्रॉन्गली वर्डेड नोट व्हिच वाज नाउ बीइंग डिलीटेड, अर्जुन सेड टू पीपल हु हैव शेयर्ड अ फ्रेंडशिप फॉर 15 इयर्स डोंट सडनली बिकम अ कपल बिकॉज अ गॉसिप पेज नीड्स अ हेडलाइन. समटाइम्स पीपल सिंपली शो अप फॉर ईच अदर, स्पेशली व्हेन अ फ्रेंड इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम. ही ऑल्सो अर्ज मीडिया पेजेस टू वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर पब्लिशिंग सच स्टोरीज, एडिंग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट builds credibility, clickbait doesn't. Actually, I also support this. Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: नॉर्थ कैरोलिना, द वेट इज फाइनली ओवर.
2: द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डांस, इंडियाज लेजेंडरी प्रभु देवा इज कमिंग लाइव टू रैली. Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
3: Witness the phenomenon, the passion and the magic of India's greatest dance icon.

स्लो मोशन में कुछ भी वीडियो चलाकर देखो, बड़ा मजा आता है। ऐसा सिनेमैटिक ड्रामेटिक हो जाता है अचानक से, है ना। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Varanasi starring Mahesh Babu, Priyanka Chopra, Jonas and Prithviraj Sukumaran is set to release on April 7, 2027, directed by SS Rajamouli. The film is an epic action-adventure spanning the world and time. Priyanka also revealed she has already filmed a complex dance sequence and teased that her much-awaited song and a dance number is still to be shot. And she told that amazing slow-motion jumps are also in it. और बहुत ही एपिक एक्शन एडवेंचर भी होने वाला है, तो सुन के ही मजा आ रहा है मुझे तो। आई विल डेफिनेटली गो टू द थिएटर्स एंड वॉच दिस फिल्म। बाय द वे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा। डिस्कवर

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू ऑफ द फिल्म ओडीसी जो मैंने अभी देखी है, तो मुझे पर्सनल टेक भी देना है अपना. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know Christopher Nolan's The Odyssey transforms Homer's timeless epic into a visually ambitious, emotionally layered cinematic spectacle. Led by a compelling Matt Damon as Odysseus, the film shines with breathtaking IMAX visuals, immersive sound designs, and Ludwig Göransson's powerful score. While its pacing and dark visual tone may not work for everyone, Nolan's grand storytelling and philosophical depth make it a rewarding theatrical experience. So final verdict is a technically brilliant epic that's best experienced on the biggest screen possible. And I just felt like that. You know, बहुत बहुत मजा आया मुझे पिक्चर देख के. It was so amazing to watch. मतलब ऐसा लग रहा था कि wow man, how one can imagine such things and उसको वैसे का वैसे पोर्ट्रे कर पाना और ऑडियंस को वैसा एक्सपीरियंस दिला पाना, such a genius way. Well, ज़रूर देखो और इन्जॉय करो फिलहाल तो आने वाले खूबसूरत गाने only on Naira.

भाई आपकी शादी की चिंता आपको नहीं है, आपके घर वालों को नहीं है, लेकिन आपके रिश्तेदारों को और आपके दोस्तों को जरूर हो जाती है कि भाई तू शादी कर ले या कब करेगा। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो हुमा कुरैशी एंड रजत सिंह हेडिंग टुवर्ड्स मैरिज, ये एक सवाल है। लेकिन वाइल डेटिंग रूमर्स अराउंडिंग द डुओ हैव बीन मेकिंग द राउंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम। नीदर ऑफ देम हैज पब्लिकली कंफर्म द रिलेशनशिप। हाउएवर हुमाज हार्टफेल्ट बर्थडे पोस्ट फॉर रजत लास्ट मंथ रीइग्नाइटेड स्पेकुलेशन विद मेनी कॉलिंग इट अ हार्ड लॉन्च ऑफ देयर रोमांस, स्पेशली आफ्टर रजत हिमसेल्फ यूज द सेम फ्रेज इन द कॉमेंट्स। इन रिसेंट मंथ्स रिपोर्ट्स हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट द टू आर प्लानिंग टू टाई द नॉट लेटर दिस ईयर। एड्रेसिंग द रूमर्स, Rajat has now dismissed the speculation, revealing that he has been repeatedly asked about the alleged wedding. The actor, who has also worked as an acting coach for over a decade, clarified that there are no such plans at present. He told Hindustan Times during pata nahi kaun kaha meri marriage kara raha hai, main soch raha hu apni mummy ka number de du, sab log mujhe phone karke pooch rahe hai. So it's not happening, isne abhi to unhone aisa keh diya it's not happening, but definitely it will happen and we will enjoy the wedding photos together. Well, stay tuned for more. I'll be back on you.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: लाओगे

OMG, I'm so afraid of some eye infections, you know, मुझे बहुत डर लगता है. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know what? Ranbir Kapoor is all set to attend the grand thriller launch of Ramayan in Delhi despite battling conjunctivitis. According to Hindustan Times sources, the actor contracted the eye infection from his daughter Raha, who got it first. Despite the infection, Ranbir is expected to honor his commitment and attend the Ramayan Pratham Sankalp event at Bharat Mandapam. इसमें क्या है, कंजक्टिवाइटिस तो नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स कंटेजियस, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है. मे बी इस वजह से शायद आलिया ने भी अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में ब्लैक ग्लासेस ऑल द टाइम पहने हुए थे. नहीं, कभी कभी नहीं भी पहना था, बट मोस्टली पहना था. इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू, बट ट्रू तो अभी ये है. फिलहाल हम चलते हैं आने वाले गानों की तरफ. ओनली ऑन नायरा.

धवन एंड जानवी कपूर ऑन स्क्रीन पेयरिंग फेसेस फ्रेश स्क्रूटनी आफ्टर बैक टू बैक सेटबैक्स. This is Bollywood Bliss with Nee Bharti on your tune frequency Naira and with Bhaval and Sunny, Sanskari ki Tulsi Kumari failing to create a desired buzz, Varun Dhawan and Janhvi Kapoor's pairing has come under the spotlight. While both stars continue to enjoy a loyal fan base, many viewers believe their on-screen chemistry hasn't quite clicked. As discussions grow online, a section of fans feel it's time for the two actors to move on and explore new pairing that could resonate better with audience. Do you like their pairing? मुझे भी सोसो वाली फीलिंग आती है यार. वेल इन दिस नोट आई एम साइनिंग अप फ्रॉम द शो. अगली बार आपसे मिलूं. टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली सेल्फ. मेरी बात सुनिए अमेजिंग शोज एंड सॉन्ग्स ओनली ऑन नायरा.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira me kho jao Pakka
1: Desi. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. वो कर ही रहे हैं और आ चुके हैं यूएस में ऑलरेडी. काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने शोज़ भी कर लिए हैं और कल आएंगे वो राले में. और ये वो कौन है? ये वो नहीं है जो आपके घर में है, ये वो हैं जो घर से बाहर हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट विशाल एंड शेखर टुडे बिकॉज दे आर इन टाउन एंड दे विल बी हैविंग दैट शो टुमारो इन राले. दैट्स व्हाट आई हर्ड. So let's do more like a precursor at Radio Naira 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM, a precursor for their show. So main lekar aayi hu khoob sare Vishal Shekhar combo gaane, so aapko ek preview mil jayega unke show ka. So you will feel, close your eyes and just feel you are in that theater where they both are performing. How about that? Chaliye आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशाल और शेखर की. ओरिजिन्स एंड अर्ली लाइफ. सो विशाल डडलानी, ही वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई इन अ सिंधी फैमिली एंड ही ग्रू अप इन बांद्रा. ही स्टडीड एट जय हिंद कॉलेज वेयर हिज ऑब्सेशन विद म्यूजिक ओवरशैडोड एवरीथिंग एल्स. एंड बचपन से ही उनको म्यूजिक का शौक था. सो कॉलेज में ही वॉज ड्रॉन टू रॉक, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल्टरनेटिव जॉनर्स, अनयूजुअल फॉर बॉलीवुड एट दैट टाइम, बिलीव मी. एंड जहाँ पे बात करते हैं विशाल की, तो शेखर की बात करनी तो ज़रूरी बनती है बॉस. शेखर रवजियानी. शेखर वॉज बॉर्न इन कच्छ, गुजरात एंड रेज्ड इन मुंबई. हिज फादर वॉज एन अकॉर्डियन प्लेयर and music was obviously in the air. Shekhar began classical training at the age of 8. He was learning Hindustani vocal, harmonium and later piano. So kind of both were into music lekin totally different. Jahan pe unko rock pasand hai, ye Hindustani vocals pe focus kar rahe the. So their childhoods although were very different, but they both were shaping themselves by the music first households. So that was the origin of both of them. So let's see how it worked out for them. How did they meet and stuff. So baatein bahut hain. Aur main hoon aapke saath from 5 to 7 every Friday. Aur aaj baat karenge in dono ki, kinki mukalaat, mulaqaat kaise hui. Chaliye, let's continue and stay tuned. Do not go anywhere and keep listening to this beautiful music.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
3: वाओ, दैट इज न्यूज। सो अभी प्रभु देवा भी आने वाले हैं, तो एक शो तो उनपे भी बनता है बॉस। एनीवे, अभी बात करेंगे विशाल शेखर प्रीकर्सर। सो आंखें बंद करी, खूब सारे गाने एंजॉय कर रहे हो एंड वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग दो सॉन्ग्स फॉर यू फॉर विशाल एंड शेखर। एंड इमेजिन कि वो अपने बारे में नहीं बताएंगे शो पे, बट मैं बता रही हूँ। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM। अब सांस लेती हूँ, एक सांस में बोलना बहुत मुश्किल है, बट नाम तो याद है, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति। 5 to 7 बने रहिए एंड वी विल कीप टॉकिंग अबाउट मिस्टर विशाल एंड मिस्टर शेखर। सो देयर फर्स्ट स्टेप्स इनटू द इंडस्ट्री कैसे थे? विशाल, एज वी नो दैट ही कंपोज ट्रैक्स फॉर प्यार में कभी कभी 1999 में, एंड ही वर्कड नाइट्स, लो बजट्स, नो इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स। इवन दो ही वॉज रिस्पेक्टेड इन इंडी सर्कल्स, बट बॉलीवुड डिडंट नो हाउ टू यूज हिज साउंड। On the other hand, Shekhar, he was ongoing creating ad jingles and small compositions. He also faced financial constraints. He had limited opportunities and constant rejections. Producer often said his sound was too soft or too classical. So both were talented, but Bollywood ko samajh mein nahi aa raha tha ki usko dono ko use kaise kare. Yeah, they were not ready for them. So it's very interesting because हम कभी सोचते हैं आज की लाइफ में कि हमें रिजेक्शंस हो रहे हैं, यू नो आई नो हार्डकोर आईटी, मोस्ट ऑफ अस वर्क इन आईटी, सो आजकल जॉब्स का बहुत बुरा हाल है एंड वी फेस कॉन्स्टेंट रिजेक्शंस। सो जस्ट इफ दैट मेक्स यू फील एनी बेटर कि हम एक आम आदमी, मैंगो पर्सन, नॉट ओनली अस वी फील रिजेक्शंस, बट people like who are now at the peak of their career, they have really done good for themselves. At some point, they also faced rejections. So, if you're facing rejections today, do not give up, because they did not. And here they are, having their own show, which they have already done a zillion times, but just one of the lessons learned. Anyway, baki ka gyan next time. Filhal, just keep listening, aankhe band karo, aur phir se aa rahe hain kuch songs that Vishal and Shekhar worked on so hard. So keep listening, do not go anywhere.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: वेलकम बैक, पक्का देसी पक्का लोकल एंड वी आर लोकल रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM. वेलकम बैक गाइज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विशाल एंड शेखर. कुछ गाने हम लेकर आए हैं, कुछ आप सुनेंगे. That is if you are going to their show on Sunday the 19th in Raleigh. But मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में before you guys go and listen to their songs which we are listening already right now. So you guys are very welcome. चलिए आगे बढ़ते हैं and we were talking about कहाँ पे थे हम, अभी हम बात करते हैं उनकी मुकालात कैसे हुई. सो दे मेट वाइल वर्किंग ऑन प्यार में कभी कभी. दे वर चाइल्डहुड एक्वेंटेंसेस बट दे हैड नेवर कोलैबोरेटेड प्रोफेशनली. सो इनसाइड द स्टूडियो दे रियलाइज्ड, वाओ, हमारी म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स

कितनी अलाइंड है. वी हैव स्ट्रेंथ्स दैट वी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल एंड आर विजन फॉर द बॉलीवुड म्यूजिक इज सो आइडेंटिकल. इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं ना, परम ज्ञान हुआ एक दूसरे से मिलकर. ये थी उनकी मोहब्बत भरी पहली मुलाकात. एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल फॉर्म अ टीम, कुछ विशाल और कुछ शेखर. एंड दिस वॉज देयर टर्निंग पॉइंट. और उसके बाद अर्ली कोलैबोरेशंस भी थी, लेकिन दे हैड क्वाइट अ ग्राइंड पीरियड. बट उसके बारे में हम वापस आकर बात करते हैं. तब तक यू गाइज लिसन टू दीज नंबर्स. डू नॉट गो एनीवेयर. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति, और मैं लाई हूं आज आपके लिए मेरी तरफ से प्रीकर्सर फॉर विशाल एंड शेखर शो. सो कीप लिसनिंग.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए
2: नया
1: तो
2: साल,
1: आए
2: नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें, नए साल पर सब कुछ नया, सिर्फ रेडियो नायरा पर।
3: सब कुछ रेडियो नायरा पर, नई बातें, नई बातें और सिर्फ नई बातें। आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति, और एट रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM। या मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हूं बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं गाने लगाती हूं वो फॉर सम रीज़न डिफरेंट कैसे हो जाते हैं। दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, बट एनी वे, सो दैट्स वाई I was a little distracted, but I love these two last numbers that they have composed. I hate love stories, Pushpa. Yeah, वैसा नहीं आया impression, but मैंने try करने की कोशिश करी थी। अब राजेश खन्ना साहब तो, you know. Anyway, I hate love stories, Pushpa. नहीं हुआ, never mind. I pass. And this one, उन्होंने तो, विशाल और शेखर ने तो ऋतिक को भी अपनी उंगलियों पे नचाया है इस गाने में। बैंग बैंग, रात भर बात कर। एनीवे, ब्यूटीफुल नंबर, ऑसम डांस एंड आई लव इट, आई लव देयर नंबर्स। सो क्या हुआ था टर्निंग पॉइंट 2007 में? एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओम शांति ओम। यस, द न्यू वन, नॉट द ओल्ड सॉन्ग वाली जो कर्ज थी, आई थिंक, राइट, उसमें था सॉन्ग। बट दिस वन वॉज ओम शांति ओम मूवी एंड दिस साउंड ट्रैक मेड दैम सुपर स्टार्स, विच वॉज दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को, विच एक्चुअली चेंज द बॉलीवुड्स सोनिक लैंडस्केप। सो इट इंट्रोड्यूस्ड सिंथ हैवी प्रोडक्शन, क्लब बीट्स, वेस्टर्न मिक्सिंग टेक्निक्स एंड अ न्यू एरा ऑफ बॉलीवुड पॉप। I'm sure they were very super creative and super excited at that time. So they did really good. This number was super, super famous at that time. So the peak era started after that because they were the duo that every big producer wanted after that. And for that matter, every producer got them also because uske baad, one after the other, they composed massive movies starting from 2008. बहुत सारी मूवीज़ हैं, कुछ के आप गाने सुन रहे हैं और कुछ के गाने मैं सुनाने वाली हूँ, बट आप लोगों का काम है कि एक फ़ोन कॉल करके बताना कि 2008 के बाद कौन सी ऐसी बेहतरीन मूवीज़ आई थी जिनमें विशाल शेखर ने म्यूज़िक दिया था एंड दैट वाज लाइक रॉकिंग, इट्स रॉकिंग। एनीवे, आप सोचिए और मुझे बताइए जब तक मैं प्ले करती हूँ कुछ सॉन्ग्स दैट यू गाइस आर सुपर डुपर वेटिंग फॉर। टू नॉट गो एनीवेयर, दिस इज अ विशाल शेखर प्रीकर्सर एंड वी आर एंजॉयिंग हियर।

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9. Good morning, everyone. This is Ravi Cherukuri, founder and CEO of Radio Naira. Today we have very special guest Vishalji and Shekharji, who is visiting Raleigh Durham for a live concert. It's an honor to introduce Vishalji and Shekharji, and today we have two hosts. One is Arvind Mahajanji, who is supporting this event for RTP Entertainment, and Atif Aliji, who is also a musician and a keyboard player for Hawa Hawa. I would like to introduce you to Arvindji, and Arvindji, please take it from here.
2: Thank you, Raviji. Today is a great day at Radio Naira, as we have incredibly talented Shekhar Ravjiani of Vishal Shekhar Iconic Duo. Very, very warm welcome, Shekharji, to Radio Naira.
3: Thank you, Arvindji. Thank you so much for having me on your show.
2: And Shekharji, I have brought almost 72 celebrity artists to Raleigh, but this is the first time ever we will be bringing the music directors, who also are beyond incredible singers as well.
3: So thank you.
2: Can you tell us to our Raleigh audience, I know it's a big thing, but in just how do you start your composing of music and to the big screen? It starts with emotions, context, thing, so that way our Raleigh audience know that how these incredibly duo make their music.
3: So obviously, as you rightly said, everything starts with emotions. Everything starts with it's a team effort. It all starts from the script to the director's vision, to lots of sittings, to a lyricist, to the production, to the engineers. And I think ye jo emotion ki hum jo baat karte hain, wo gana tab banta hai jab all emotions are in the same high level. So I think shuruaat to aise hi hoti hai. Shuruaat to ek brief se hoti hai, jo ek director ki jo vision hoti hai, whatever their vision is and how they want a song to feature in the film as a extended screenplay, and how they kind of visualize it, and we kind of try to match up to the director's vision. And 99.99% we are on the same page, and then the song goes out to the world, and then the world decides ki ye gana acha hai ya bahut acha hai ya ye gana consumable hai ya nahi.
2: Aur ek gaane ko banne mein minutes lagte hain, mahine lagte hain, saal lagta hai ya
3: kuch hamare jo super se gaane hain wo under 3 minutes pe bane hain. और कुछ ऐसे सुपर हिट गाने हैं जो जिनको 2-3 दिन लग गए, कुछ ऐसे गाने हैं जिनको कभी कभी 4 महीने लगते हैं, क्योंकि उसके एक एक नया साउंड, नया ब्रीफ, कुछ नई चीजें होती है तो उसमें क्या वक्त लग जाता है थोड़ा. तो एंड वी रिस्पेक्ट ऐसे, इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता. जब ऊपर वाला भेजना चाहता है तब हम ले लेते हैं उसको.
2: तो ऐसा, अब ये तो सरप्राइज हुआ कि 2 मिनट में भी गाने बनते हैं. ऐसे कौन से गाने थे जो राले ऑडियंस को पता लगे कि जो 2-2 मिनट में बने और वो सालों से एंजॉय कर रहे हैं?
3: 10 बहाने करके ले गए दिल वाज मेड इन 2 मिनट्स. जो भेजी थी दुआ वाज मेड इन 2 मिनट्स. तू ना जाने आसपास है खुदा वाज मेड इन 2 मिनट्स. मोस्ट ऑफ द सॉन्ग, लॉट्स ऑफ सॉन्ग, जुमे जो पठान वाज मेड इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स. तो ये जो गाने जो अपने आप बन गए, वो कभी कभी खुद भी ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो गया, लेकिन इसको ही म्यूजिक कहते हैं, इसको ही चमत्कार कहते हैं, इसको ही जो ऊपर वाला जो भेजता है, हम सिर्फ जरिया है, लेकिन वो भेजने वाला तो वही है, तो ऑलमाइटी.
2: हम तो कहेंगे कि ये मैजिक विशाल शेखर का है.
3: नहीं, विशाल और शेखर का मैजिक आता है ऊपर वाले से, हम तो कुछ नहीं है. हम तो एक जरिया है बस, और कुछ नहीं है.
2: सो काइंड ऑफ यू, सो हम्बल ऑफ यू. हमारे साथ आतिफ भी है जो खुद एक म्यूजिशियन है और कीबोर्ड प्लेयर है, और उन्होंने हवा हवा का में कीबोर्ड भी इन्होंने ही बजाया था.
3: क्या बात है
2: आतिफ जी, आपके कुछ क्वेश्चंस थे विशाल शेखर जी के लिए?
4: Absolutely. First of all, sir, Shekharji, it's a great honor to talk to you. You have been in Bollywood for more than two decades, and you have given some chartbusters and very notable household name of movies like Om Shanti Om, Chennai Express, and of course, Sultan and Pathan. And it's a great honor to talk to you. And मेरे पास बहुत सारे technical questions थे, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो audience के लिए नहीं है. लेकिन कभी बैठ के आपसे अगर अलग ही में बात हुई तो मैं definitely आपसे कुछ technical बातें भी करूँगा अपने मन की. अभी मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये बताइए कि आपको राले आके कैसा लग रहा है और मौसम कैसा यहाँ का लग रहा है, और ये बताइए कि आज ये जो हमारा 18 को कॉन्सर्ट होगा इसमें राले के फैन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट हैव यू इन इन प्लान?
3: पहली बात तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल वेलकम. और खुशी महसूस होती है कि एक म्यूजिशियन आरजे के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसका उसका लुत्फ ही अलग होता है, क्योंकि आपको समझ है, आपको आपने इतने बड़े बड़े गाने बजाए हैं. तो एक तो यू नो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी ऑल्सो टू टॉक टू यू. And at the same time, I'd like to say that you know, Raleigh is a place which I've never visited before, and looking forward so much to the audience, looking forward to celebrating 25 years of Vishal and Shekhar. 25 साल हमें हो गए, करीबन 65 films और 650 गाने हमने बनाए हैं, उसमें से बहुत सारे सुपर हिट्स और बहुत सारे जो चार्ट बस्टर्स हैं वो हम सेलिब्रेट करेंगे लोगों के साथ. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर इन राले एंड रियली एक्साइटेड टू काइंड ऑफ इनवाइट पीपल टू कम एंड एंजॉय द सेलिब्रेशन विद अस.
4: वेल, आई एम श्योर यहाँ पर आप लोगों का नाम सिर्फ आई मीन आई नो आपने बहुत बड़े बड़े शहरों में परफॉर्म किया होगा, लेकिन वन थिंग आई कैन टेल यू कि आप राले को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा. यहाँ पर ऐसा क्राउड है कि जो आपके साथ एक एक सॉन्ग का एक एक वर्ड खड़े होकर गाएगा. लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपके सॉन्ग्स के लिए, एंड यू आर लाइक आई सेड हाउस होल्ड नेम. मेरे एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब कोई भी गाना बनाते हैं तो पहले मेलोडी को कंसेप्चुलाइज करते हैं या सिचुएशन, या पहले आपके पास लिरिक्स होते हैं?
3: ज्यादा करके 98% मेलोडी बनती है पहले.
4: ठीक.
3: या कोई लिरिसिस्ट कुछ नया देना चाहता है तो कभी कभी वहां से भी गाना शुरू होता है. जैसे जय नसीब करके एक गाना है, हमारा गाना, और वो एक्चुअली अमिताभ भट्टाचार्य जो लिरिसिस्ट हैं इस गाने के, उन्होंने मुझे पहले तो बेतहाशा एक शब्द दिया रोमांटिक सॉन्ग के लिए. तो मैंने उनसे पूछा कि भैया इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा, बेहद, बेतहाशा, आप किससे बेतहाशा मोहब्बत कर सकते हैं. तो मैंने गाना शुरू कर दिया बनाना बेतहाशा. उनके बाद उन्होंने मुझे और एक शब्द दिया जब मैं वो बेतहाशा गाना बना रहा था, और वो शब्द था जहनसीब. अब मुझे जहनसीब भी बहुत पसंद आ गया, तो मैंने पूछा ये जहनसीब का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि फॉर्चुनेट की मुझे तुम मिली, फॉर्चुनेट की ये हमारे साथ हुआ. तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको जहनसीब और बेतहाशा दोनों पसंद है तो मैं एक ही लाइन में आपको दे सकता हूं कि जहनसीब जहनसीब तुझे चाहूं बेतहाशा जहनसीब.
4: क्या बात.
3: तो ये जो लिरिक्स आए मेरे सामने उसके बाद मैंने ये गाना कंपोज किया, विच इज वेरी रेयर. ज्यादा करके सब गाने पहले कंपोज होते हैं, उसके बाद लिरिसिस्ट उस पर लिखता है, और कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो लिरिक्स सामने होते हैं और गाना बन जाता है ऑन द स्पॉट.
4: और बाद में ऐसा भी होता है कि अल्फाज की गहराई की वजह से आपको एक मूड बन जाता है आपका कि यार,
3: एक मूड बन जाता है इस शब्द जो साउंड, शब्द का जो साउंड होता है, या एक सेंटेंस का जो साउंड होता है उससे बन जाता है कुछ.
4: अच्छा, लुकिंग बैक, आपके आप दो डेकेड से आप म्यूजिक कर रहे हैं, और हम समझ सकते हैं कि म्यूजिक कितना इवॉल्व हुआ है बॉलीवुड में. वो जमाना था कि जब 100-100 पीस का ऑर्केस्ट्रा होता था, उसके बाद फिर म्यूजिक लैपटॉप में आ गई, फिर अब एआई आ गया, तो बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस हुए हैं पिछले दो डेकेड्स के अंदर म्यूजिक में. तो आप लुकिंग बैक, आप मुझे बताइए कि कौन सा गाना जो था जो आप समझते हैं किसने आपके करियर को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज किया?
3: आई थिंक जब पहली हमारी एल्बम आई प्यार में कभी कभी, मुसु मुसु हासी, वो पहली बारी गाने सब बहुत फेमस हुए, लेकिन झंकार बीट्स से हमें एक रिकग्निशन मिली, विच वॉज अ ट्रिब्यूट टू पंचम दा.
4: राइट.
3: वो एल्बम से हमें एक चेहरा मिला और उसके बाद जो एक सुपर हिट स्टेटस बोलते हैं कि ये दोनों सुपर हिट म्यूजिक कंपोजर्स हैं, वो मिला हमें जब एक गाना आया जिसका नाम था 10 बहाने करके ले गए दिल।
4: राइट,
3: सो दैट वाज हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड उसके बाद देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक फॉर द लास्ट 25 इयर्स। यस,
4: अच्छा मैंने एक चीज और नोट की शेखर जी आपके काम में, वो एज ए म्यूजिशियन मैंने ये चीज नोट की कि आपने हमेशा कोशिश की है कि कुछ अलग किया जाए। लाइक टिपिकली होता है कि कंपोजर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक जॉनर को या स्पेसिफिक टाइम सिग्नेचर को फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई 4-4-6-8। मैंने देखा कि आप, जब मैंने आपका वो गाना सुना शीला की जवानी ये चमक
3: जी,
4: कर लो, मैंने कहा यार ये तो डिफरेंट बीट है और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इस तरह की बीट्स पहले बहुत रेयर केसेस के अंदर, तो आप कैसे ये कंसेप्चुलाइज करते हैं कि हम इस गाने में अब ये डिफरेंट टाइप का हमने कोई बीट करना है या एक डिफरेंट सॉन्ग बनाना है और ये चीज जो है दैट हैज बिकम योर सिग्नेचर, कि आपका गाना सुनते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये हो ना हो इन्हीं का काम है ये।
3: जी वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि ये कैसे होता है वो आज तक मुझे पता नहीं चला कैसे होता है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा सोच के और ज्यादा एनालाइज करके हम म्यूजिक नहीं बनाते, हम जस्ट फ्लो फ्लो के साथ बनाते हैं म्यूजिक को। जो फ्लो जो बन जाती है एक बार, कहाँ से कौन सी बीट बनेगी, क्या धुन बनेगी, क्या होगा, ये अपने आप ही फ्लो हो जाता है। तो ज्यादा सोचते नहीं है इसके बारे में, सिर्फ करते हैं, एंजॉय करते हैं बस। म्यूजिक बनाने का एक जो लुत्फ है वो उठाते हैं और एंजॉय करते हैं।
2: So, शेखर जी, आपको एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर सब जानते हैं। अगर आप से अगर म्यूजिशियन और इसके अलावा अगर शेखर जी को जानना हो तो हुई शेखर?
3: सर मैं वही हूँ सर, जो आप कह रहे हैं वही हूँ। मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं कंपोजर हूँ और बस मैं पेट लवर हूँ और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं।
2: आपकी डॉटर भी बहुत अच्छा डांस वगैरह करती हैं।
3: मेरी, हाँ, मेरी बच्ची बहुत कमाल का डांस करती है और आई एम अ वेरी प्राउड फादर।
2: That's awesome. So, और आपके जो शो आने वाला है राले का,
3: जी
2: उस दिन जो है फीफा वर्ल्ड कप भी है,
3: जी
2: तो वो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है।
3: जी
2: सो आप जो फीफा के जो फैंस हैं और आपके जो फैंस हैं, इतना बड़ा दिन है ये संडे का, 19 जून का,
3: जी जी
2: तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम कैसा शो वेट करें, या आफ्टर पार्टी है अपने वर्ल्ड कप विनर की, क्या करेंगे बताएंगे उनको?
3: आई थिंक हम सेलिब्रेट करेंगे, म्यूजिक सेलिब्रेट करेंगे, हम म्यूजिक
2: अच्छा,
3: सेलिब्रेट करेंगे। हम हमारा 25 साल के जो गाने हैं, बहुत दिल से हमने कुछ नया प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, तो हम वो आपको सुनाएंगे एंड इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली मोर एंटरटेनिंग देन द वर्ल्ड कप।
4: तो टॉकिंग अबाउट दैट लाइव परफॉर्मेंस था, मुझे ये पूछना था शेखर जी आपसे कि आप एक तो पहली तो ये कि आपका, क्योंकि जाहिर है मैं म्यूजिशियन हूं तो ये पूछूंगा मैं आपसे कि आपका जो बैंड होता है वो कंसिस्टेंट होता है या आप चेंज करते हैं, और दूसरी ये कि हाउ मच एफर्ट यू पुट इन योर लाइव परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन एंड और रिहर्सल्स आप लोग कितनी ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं या आप लोगों के सब सेट होते हैं, किस तरह से आप लोग करते हैं, आप
3: हमारे
4: थोड़ा भी।
3: बैंड में जितने म्यूजिशियंस हैं वो सब लेजेंड्स हैं, वो शायद हमारे से ज्यादा, हमने अगर 25 साल में हुए हैं तो हमारे पास एक ऐसे म्यूजिशियन है, दो दो तीन ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिन जो वो जो पंचमदा के साथ बजाते थे।
4: अरे वाह वाह क्या बात,
3: तो वी हैव लेजेंड्स विद अस और हम लोग ने तैयारी बहुत ही खूब की है एंड वी आर लुकिंग, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग इन रैले एंड टू हैव अ फैंटास्टिक कॉन्सर्ट एंड वी वांट टू एंजॉय इनवाइट एवरीबॉडी इन रैले टू कम एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम विद अस।
2: शेखर जी आप भी कुछ प्ले करने वाले हैं गाने के अलावा?
3: ये सरप्राइज है, आपको आना पड़ेगा शो के लिए जानने के लिए।
2: वो तो हम तो वहां होंगे ही होंगे सबके, आपके बिल्कुल सामने। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ राले आर सो एक्साइटेड टू हैव यू फर्स्ट टाइम विजिटिंग राले। आई
3: कांट हियर यू, हेलो।
2: एम सेइंग लॉट ऑफ पीपल आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू यू नो रॉक देम ऑन June 19th।
3: जुलाई
2: आई एम
3: सो सो सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग एवरीबॉडी।
2: आतिफ, आपका कोई लास्ट क्वेश्चन? और दूसरा बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो यंग लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ इंस्पायरिंग करने के लिए कोई वर्ड्स हैं आपके पास?
3: बस करते रहो, आप दिल से करो, पैशन से करो और आगे बढ़ो, बस लड़ाई मत करना. डोंट बी इन अ रश, आपका टाइम आएगा, सिर्फ अपना अच्छा काम करते रहो बस.
1: Thakur ji, this is Ravi. I just wanted to tell our listeners, this is the event is after the World Cup final. There is no clash. So don't think it is going to be an clash between these concerts. Come to the concert and enjoy in the evening, July 19th. And Shekhar ji, we have an association. I talked to your office 12 years ago to do a jingle for my radio. You did a wonderful job for Bajate Raho for Red FM.
3: Oh, yeah. I'm going to see you guys soon in Raleigh, yeah?
2: So thank you so much.

0: वाला नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। ट्रायंगल एरिया के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक साथ दो बड़ी आफत का अलर्ट जारी करा है। आई एम सो सॉरी, शुरुआत शो की ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो बताना तो पड़ेगा। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग का धुआं अब हमारे आसमान तक पहुंच गया है, जिससे हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। ऊपर से आज आसमान छूते तापमान की वजह से विक और डरम काउंटी समेत पूरे सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना में हीट एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि खराब हवा और भीषण गर्मी का ये डबल अटैक सांस में मरीजों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसलिए वीकेंड पर बिना वजह बाहर घूमने से बचे और घर पे ही रहें। सुनाने जा रहा हूँ आपको इस शाम का पहला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड बिजनेस और रियल एस्टेट की बात करें तो कल से शुरू हुए रिसर्च ट्रायंगल पार्क आर्किटेपी के लिए, नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आज भी लोगों ने भारी उत्साह जो है, एनर्जी जो है वो दिखाई है। नए विजन फ्रेमवर्क आरटीपी 3.0 के तहत अब पार्क में सिर्फ साइंस लैब्स नहीं बनेंगी बल्कि रहने के लिए वर्ल्ड क्लास अपार्टमेंट्स और टाउन हाउस बनाए जा रहे हैं। नए सीईओ जोनाथन प्रूएट इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इससे आरटीपी का पूरा हुलिया जो है, ट्रांसफॉर्मेशन हम जिसे कहते हैं, वो बदला जाएगा। एंड बहुत सारे चीज़ें आने वाली है एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई, मतलब एंटरटेनमेंट, फन एंड वर्क, ये तीनों चीज़ों का मिलाप एक ही जगह पर अब हमें देखने मिलने।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

वेलकम बैक टू एवरीबडी। नॉर्थ कैरोलिना की राजनीति से आज एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूएस सीनेट के चुनावों के लिए जारी एक नए फंड रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व गवर्नर रॉय कपूर ने फंड जुटाने के मामले में अपने प्रतिद्वंदी माइकल हेटली को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एंड कूपर की कैंपेन टीम ने अब तक करीब $35 मिलियन जुटा लिए है, जो हेटली के फंड से 3 गुना ज़्यादा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पैसों की ये बढ़त कूपर को चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। ये खबर मतलब काफ़ी पता चली है हमें कि कैसे क्या चल रहा है। एंड मौसम के बारे में अगर बात करूँ तो गर्मी जो है एंड जो बारिश है उसके बीच में का मौसम चल रहा है, तो ख्याल रखना बहुत जरूरी हो चुका है। सुनाने जा रहा हूं आपको अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: कल की बारिश के बाद आज सड़कों पर ट्रैफिक धीमा। आप सुन रहे हैं रेडियो नैना पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आज पराग, साथ से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। लोकल खबरों के इस आखिरी हिस्से में बात करते हैं सड़कों के हाल की। हालांकि आज आसमान साफ है, लेकिन कल रात ट्रायंगल के कई हिस्सों में हुई बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी जमा होने के कारण आज सुबह से ट्रैफिक की रफ्तार काफ़ी धीमी देखी जा रही है। कई एक्सप्रेसवे और कनेक्टिंग रूट्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है, इसलिए अगर आप आज किसी ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो सड़कों पर थोड़ा संभल कर चलिए और सुरक्षित ड्राइविंग करिए। आपको यू नो लाइक डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन करना है।
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 1490